0: क्या बात है, छागे भी छागे चकते फटे प्रोग्राम पंजाबी लहरा।
1: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं 2014 तो 2022 तक तुहानूं रिप्रेजेंट कीता। मेरी एबसेंस विच असीं देखिया टैक्स इंक्रीज, हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंट्स नूं अनदेखिया कीता। जदों मैं तुहानूं रिप्रेजेंट कीता, मैं टैक्स घट रखे, बुजुर्गां लई बस सर्विस मुफ्त कीती, सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लिआंदा अते हजारां नौकरियां लिआंदियां। सब तों इंपोर्टेंट, मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां। हुण मैनूं करप्शन नूं रोकण लई तुहाडी मदद दी लोड़ है। 26 अक्टूबर नूं भरखी होई लीडरशिप नूं वोट पाओ, गुरप्रीत सिंह ढिल्लों नूं वोट पाओ।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ गुरप्रीत ढिल्लों।
0: ओके, गिल फार्म ते जे नहीं गए ना, थोड़ी बड़ी वड्डी गलती है। गिल फार्म ते साग, पालक, मूली, शलगम, लाल गाजरां, हरियां मिर्चां, होर बहुत सब्जियां रोज फ्रैश डेली पिक करदे आ, ते देसी आंडे फार्म दे फ्रैश, फ्रैश दुध, फ्रैश शहद फार्म दा, ते फ्रैश पत्थर दी चक्की नाल पीसिया आटा रोज, बहुत वधिया क्वालिटी। 14085 डिक्सी रोड, डिक्सी एंड किंग। गिल फार्म, गिल फार्म, गिल फार्म ते तुसी जाओ। जग दे पैरालीगल एंड इमीग्रेशन, जग दे पैरालीगल एंड इमीग्रेशन दी टीम नाल तुसी जरूर जरूर जरूर संपर्क करो, तुहानू बहुत फायदा। कोई भी नोटरी सेवावां तुहानू चाहीदियां ने, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी डॉक्यूमेंट्स दे, पावर ऑफ अटर्नी, एफीडेविट, कोई BLS दे नाल जुड़े डॉक्यूमेंट ने, कोई ट्रैफिक टिकट आ गई, कोई स्पीडिंग दी, कोई स्टॉप साइन दी, कोई टेनेंट नहीं थोड़े घरों निकल रहा, ये सारियां सेवावां खास तौर पर BLS दी कोई भी सर्विस है, जग दे इमीग्रेशन दे रमनदीप जग दे 6478085859 6478085859 6478085859। एंड तुसी जे बिजनेस शुरू करनी है, तुहानू पता नहीं लग रहा कि नवी यार सानू पता ही नहीं बिजनेस शुरू किवें कीती जावे, बहुत लोगों नू प्रॉब्लम है, मैं तुहानू गुरिंदर सिंह जी दा नंबर दिना। ये बिजनेस कंसल्टिंग करदे आ, 1-on-1 कंसल्टेशन, बिजनेस किवें स्टार्ट करनी है स्टैप बाय स्टैप, लो कॉस्ट ते बिजनेस किवें शुरू करनी है
3: 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 9 7364 ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਦੀਕ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ।
0: ਸਦੀਕ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ? ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲੈਜੈਂਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਦੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੱਗੀ ਤਿੱਤਰੀ ਕਮਾਦੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਕਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ। ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਓਇਲ ਚੇਂਜ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, 10874 ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਈਸਟ, ਸਟੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਸਨੋ ਪਾਰਕਵੇ ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਹੈ ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਦਾ। ਜਾਓ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੇ। 10874 ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਈਸਟ, ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਜੇਮਸ ਸਨੋ।

0: यार आ गया मजा। 5092 हाँ जी।
1: हेलो हाँ जी
0: सत श्री अकाल जी। वीर ने कहा था सीगा ओके ओ हुणे एक ता ने दूजी इंटरसेक्शन है जिथे ओ कह रहे पता नहीं लगे उथे की होया खबर। बहुत शुक्रिया। फिंच गेट ते किसनूं पता की होया यार कहिंदे सीगे कि अपने क्वीन एंड फिंच गेट दे नाल अपना की कहिंदे कोई एक्सीडेंट होया किसी कुड़ी दी कोई कोई इनवॉल्व सीगी आई एम नॉट श्योर जे किसी नूं पता होया दस दिओ। सो सारे मैसेजेस साडे थोड़े तक पहुँच गए ने राइट आई होप। ते लेनेक्स दे ऑथराइज डीलर ने ग्लोबल कंफर्ट है किसी ने भी अगर नवी फरनेस लवानी है ग्लोबल कंफर्ट एयर फरनेस देखो लवा लो। हीट तो हुण चाहीदी हुण तो चल गई हीट घरां च ते फरनेस दी रिपेयर लई या नवी फरनेस लई 416-419-1212 416-419-1212 तुसी गड्डियां घरां दी इंश्योरेंस चाहुंदे हो ना तुहानूं ऐसा रेट मिले कि थोड़ियां भी अखां खुल्लियां रह जाण कि बल्ले बल्ले एडा डिस्काउंट तां तुसी मनप्रीत ढींड सानूं फोन करो 416-500-1818-416-500-1818। जे तुहाडे फ्रिज स्टोव डिशवाशर वाशर ड्रायर कोई अपलायंसिस दी रिपेयर होण वाली है तां प्रदीप भाजी 647-622-3203-647-622-3203-6422-3203। कैलेडन मित्सुबिशी गड्डियां तुहानूं मिल रही ने 10 साल की वारंटी के नाल यार कैलेडन मित्सुबिशी 647-678-2754-647-678-2754 कैलेडन मित्सुबिशी। सुख भाजी साढ़े नाल ने फिर खबर लाने जी। सुख भाजी
2: बहुत शुक्रिया धन्यवाद नवी भाई जी। बिल्कुल साडे लिसनर तक यही मैसेज देवांगे जी फ्राइडे से जिहड़े संडे मंडे जिहड़ी 4 दिन दी लॉन्ग वीकेंड दी सेल लगन जा रही आ फर्नीचर दे उपर परिवारां ने किसी भी तरह दी फर्नीचर दी मांग करनी आ ते इस लॉन्ग वीकेंड नूं मिस नहीं करना। लोएस्ट प्राइस तुसीं फर्नीचर दे उपर लैके जाणी आ ते नाल वड्डे वड्डे तोहफे तुसीं अपने घर लैके जाणे आ। ते नवी भाई जी जिन्हां परिवारां ने सॉलिड वुड दा कॉफी टेबल लैणा सॉलिड वुड दा सख्त लकड़ी दा कॉफी टेबल सिर्फ 199 दा मिलूगा। साइडां वाले दोनों साइड टेबल तुसीं फ्री अपने घर लैके जाणे आ ते नाल हूवर कंपनी दा वैक्यूम क्लीनर फ्री तुसीं अपने घर लैके जा सकदे हो। सो जरूर एक चक्कर लाओ 294 वॉकर ड्राइव दे उपर 294 वॉकर ड्राइव ग्रैंड होम फर्नीचर दी लॉन्ग वीकेंड सेल नवी भाजी।
0: क्या बात है बहुत शुक्रिया सर। हार्डवुड जॉइंट हाजिर है जे किसी नूं भी हार्डवुड लैमिनेट टाइलां वाइनल कोई भी फ्लोरिंग दा समान चाहिदा टोरब्रम स्टील्स हार्डवुड जॉइंट टोरब्रम स्टील्स हार्डवुड जॉइंट ते सानूं गेड़ा जरूर मारना पैना। साडे यार जिन्ने मित्र सुन रहे थोड़े कोल गड्डियां हैगियां तुसीं कहिंदे नवी यार गड्डी नूं थोड़ा जिहा शिंगार ना अंदरों मैं तुहानूं इक नंबर दिंदा डिटेलिंग ब्रोज ऑटो केयर वालिआं दा। इह ना गड्डी च स्टार लाइटां लाउंदे आ थोड़ी छत ते जिवें अपने रोल्स रॉयस दे अंदर नहीं लगियां हुंदियां स्टार लाइटां उवें स्टार लाइटां लगदियां ने। ते तुसीं कहोगे नवी यार इन्ना सोहणा वीर उहनां ने काम कीता कोई कट वड नहीं करते स्टार लाइटां लवाओ रोल्स रॉयस दे वांग अपनी गड्डी च। नंबर नोट कर लो तुसीं 647-819-2034 बहुत ही सोहणा काम 647-819-2034 647-819-2034

0: वाले हो, उन महंगे परफ्यूम आते $400-500 लॉन दी बिल्कुल लोड नहीं। रॉयल परफ्यूम्स दी हो चुकी है ग्रैंड ओपनिंग। स्विट्जरलैंड तो इंपोर्ट कीते ऑयल्स नाल तैयार डियोर ते शनैल वर्गी सेम फ्रेग्रेंस जो चले 8 घंटिया तो भी वध। हर परफ्यूम सिर्फ $50 विच अते रेडियो उड़ान दे स्रोतिया ले खास धमाका। बाय टू गेट वन फ्री यानी $100 चे 3 परफ्यूम ते नाल एक तोहफा रेडियो उड़ान प्रभ संधु दा रेफरेंस देन ते। अपने आप नू फुल्लां दी तरह महकाओ। आज ही आओ Unit 9, 1 Regan Road ब्रैम्पटन सिख संगत गुरु घर दे नेड़े जा ऑर्डर करो www.royalperfumes.co ते कॉल करो 4373150701।
1: The 2026 Brampton municipal election is on Monday, October 26th. If you can't vote on voting day, you can vote early during advance voting. Advance voting will take place on October 9, 10, 11, 16, and 17. Voting hours are weekdays from noon to 8 p.m. and weekends from 10 a.m. to 5 p.m. You can vote at any advance voting location in Brampton. Bring your voter notice if you received one and identification showing your name and address to vote. Didn't receive a voter notice? Bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. For voting locations, voter information, and a list of candidates, visit brampton.ca/bramptonvotes.

ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते। एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किस भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी आ स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम टू स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 9057991478-905-799-1478-1498 Royal Auto Center. Central Mississauga de rehn waleo e mauka na gawao Ballymore Homes valon Dairy Lane Towns jald hi Dairy Road West ate Hur Ontario te aa rahe ne Contemporary Town Home high $700,000 to shuru ho rahe ne simit samay layi HST de vich khaas bachat da fayda lao Highway 401 407 ate 410 Go Transit Shopping ate Pearson Airport to sirf kujh ek mintan di duri te sab to pehle buyers de vich shamil hon da mauka na gawao ajj hi register karo ballymorehomes.com b a l l y m o r e homes.com

0: 7997877sofastudio.ca. थैंक यू जी।
1: ओए इन्नी गौर नाल की लभी जाना स्मार्टफोन चो
2: भरावा ट्रक लिए लोन लभन डया
3: स्मार्ट फाइनेंशियल एंड लोन सर्विसेज ते आओ ट्रक लोन्स मॉर्गेज डेट कंसोलिडेशन दिया सर्विसेज पाओ दलविंदर जज नो कॉल कमाओ 647-504-3297 20 मैरीटाइम ओंटारियो बुलेवर्ड यूनिट 210 ब्रैम्पटन और विजिट www.smartfinancialgroup.com।
4: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई परोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नु अपना कीमती वोट पाओ।
5: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दे लई जनता दा साथ देन के उना च अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना लोकल डेवलपमेंट नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी फुल पुलिस स्टेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है।
4: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
6: ਓਏ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਤੇ ਆਟੋ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾਤਾ।
7: ਓ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ।
6: ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਟ 416-618-2761 416-618-2761।
8: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 905-790-0560, 6 Marconi Code, Bolton, 905-951-9394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से

0: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट किया मेरी एबसेंस विच असी देखिया टैक्स इंक्रीज हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया किया जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट किया मैं टैक्स घट रखे बुजुर्गों ने बस सर्विस मुफ्त की सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लिया हजार नौकरियां लिया सब तो इंपोर्टेंट मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां हुण मैनू करप्शन नू रोकण लई तुहाडी मदद दी लोड़ है 26 अक्टूबर नू भरखी होई लीडरशिप नू वोट पाओ गुरप्रीत सिंह ढिल्लों नू वोट पाओ
1: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ गुरप्रीत ढिल्लों

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: हाँ जी सर, कौन बोल रहे हो? हेलो
2: जी, अमन जी आदम बात कर रहा हूँ. जन्मदिन जी मुबारक.
1: अरे हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू सो मच.
2: क्या भाई, 22 के हो गए कि 24 के हो गए?
1: सर 16.
2: 16 अभी चल रहे हो?
1: सर हम ऐसे ही रहेंगे. मैं ना चाइना गया, एक आदमी मिला हमें.
2: जी
1: उसने मेरे को पूछा कि कितने साल हो गए कनाडा में आपको. मैंने उसको जवाब दिया कि मैं उम्र, साल और पैसे तीनों को गिनता नहीं हूँ.
2: गिनता नहीं हूँ?
1: नहीं, मैं गिनता नहीं पाजी. मैं है ना,
2: ठीक है.
1: मैं कहा तीनों को मैं गिनता नहीं हूँ, इनको गिने बिना ही जिंदगी चला रहा हूँ. वो आदमी ना गर्म हो गया एकदम से. वो बंदा था इंडिया से, वहीं पे बंदे इंग्लैंड से बैठे थे और वहीं पे बंदे ऑस्ट्रेलिया का भी एक बैठा था हमारे साथ. वो काफी गर्म हो गया, मतलब पर्सनली ले गया. कहना ये कोई जवाब हुआ यार, बंदों की तरह आप जवाब दो. मैं क्या यार तीनों की हो गया. हमने खाना खाया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं उठ के चला गया. 3 दिन बाद वो मेरे को मिला कैंटन फेयर में, मेरे को सॉरी बोलने लग गया. मैं क्या भाई सॉरी बोलने वाली बात नहीं, मेरा असूल है कि मैं नहीं गिनता. तेरे को बुरा लग गया, मैंने तेरे को कुछ गलत नहीं बोला था. मैंने बताया कि मैं गिनता नहीं हूं उन 3 चीजों को, इसमें तेरे को क्या बुरा लग गया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. 905-673-3333 स्टूडियो नंबर. हेलो जी,

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 B23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा भी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी भी कित्थों लवां।
3: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000।

0: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स, पेस्ट्रीज, मिठाइयां, समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचन वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।
1: A1 के तुम गालिए।
2: आज
3: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए जी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
3: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा टिलोवीडियो.com होर कोई सेवा
5: हाय दिस इज हरप्रीत सिंह फ्रॉम टॉप चॉइस इन

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
4: यार इना इंश्योरेंस ने ते धुआं कढ़ाता, वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा?
5: टॉप फाइनेंशियल इंक तो, जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
6: क्रिटिकल मॉर्गेज, RESP, RRSP, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने तां तुहानूं अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
5: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100
6: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड, यूनिट 11, ब्रैम्पटन।
7: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kuman of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मां। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मां, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट।
6: दोस्तों, मैंने फिंगर बढ़ा ली ते मैं आ रहे जी 11 अक्टूबर टोरंटो रोज थिएटर दे अपने शहर थोड़ी डिमांड
7: बदनाम करती नाले मैं ते क्यों दी मिठी चोरी।
6: ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
0: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

सुगंध वर्गा किसे चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सज्जरी त्रेल वर्गा तो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अमड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गबरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किसे प्यार ना दित्ती होई निशानी वर्गा मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य ठट्ठे दे लैके रंग तुहाडे रूबरू लैके

फास्या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015

0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानूं सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381। Solution to promote your business. Desh Pardesh Prime Time Radio and TV. Tohade Angsang 24 Ghante Satto Din. Hun tak Desh Pardesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vadha karan vaste Desh Pardesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551.

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: Ontario te aa rahe ne contemporary town home high $700,000 to shuru ho rahe ne simat samay layi HST de vich khaas bachat da fayda lao highway 401 407 ate 410 go transit shopping ate pearson airport to sirf kujh ek mintan di duri te sab to pehle buyers de vich shamil hon da mauka na gawao ajj hi register karo ballymorehomes.com ballymorehomes.com कोई भी कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किस भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1 4789057914 Royal Auto Center.

0: थैंक यू सर। सो नहीं बट देखो हमने कई लगता कि जिन्हें जिन्हों विपता पै रही होने ऊपर विपता थोड़ा आ रहा आप विपता क्यों समझते हैं जे कोई हमने कुड़ी शेयर करना चाहती है तो आप कहने यार घर वाला बेचारा उन्होंने तो विपता पै गई डिगड़ी विपता पै गई उन्हें कहना कोई धोखा देता उन्होंने बट खैर चलो नहीं देखो थोड़े आपके ओपीनियन ने तुसी यू आर नॉट रॉन्ग 6618 प्लीज होल्ड करो तुसी वार वार कट्टो ना जस्ट स्टे ऑन द लाइन ते थोड़ी भी कॉल लवांगे जस्ट थोड़े होल्ड करो एक मैं थानू नाल दी नाल मैसेज दे देवां कि देखो सब नू पता इलेक्शंस आ रही ने ते जिन्हों वोट पाउणी है थोड़ी आपकी मर्जी है तुसी आपदे जरूर राइट नू एक्सरसाइज करो मंडे 26 तरीक नू इलेक्शंस ने एडवांस पोलिंग हो रही है अर्ली वोट करने लई 9 अक्टूबर 9 10 16 ते 17 यह डेट्स ने ते वोटिंग आवर्स वीकडे दे विच दोपहर तो लैके रात 8 बजे तक वीकेंड ते 10 तो लैके 5 बजे तक किसी भी वोटिंग लोकेशन ते एडवांस वोटिंग लोकेशन ते वोट करो कोई जानकारी चाहिए है brampton.ca/brampton votes वोटर नोटिस थोड़े को है वो लै जाओ तो आई डी नहीं तो अपनी आई डी लै जाओ तो अपनी इनफॉर्मेशन उत्थे अपडेट कर दौ brampton.ca/brampton votes जी 6618 हैलो हाँ जी अपना रेडियो जी जो पिछे चल रहे बंद कर लो प्लीज
1: अच्छा जी
0: हाँ जी
1: क्या नवी भाजी
0: जी सर
1: ठीक हो
0: जी सर बहुत वधिया तुसीं सुनाओ
1: मैं तुहानू एक क्वेश्चन करना चाहना अगर तुहाडे
0: नहीं पर देखो भाजी तुसी मैनू ना ये क्वेश्चन करो कोई पर्सनल हो मैं थोड़ा कहां थोड़ी घर वाली आए मैं थोड़ा थोड़ा कह रहा आप जनरिक डिस्कशन कर रहे हैं जो मेरे घर च है जो मेरे परिवार च है वो देखो कितना कितने वो चीज़ा प्राइवेट होंगी भी की थोड़ा रिलेशनशिप है कि नहीं राइट
1: सही नहीं नहीं मैं कहना सिर्फ थोड़ी राय ले रहा था
0: अगली चाह रही है आई डोंट थिंक उसके हस्बैंड नूं आई कंट्रोल करना चाहिए
1: जी मसला पता कि असि जिस जगह तो आए हैं साडे कोई अपनी मुआशरत जड़ियां ने ना वो साडिया कोई चीजा ने जड़ियां सानू मतलब के ओनू नहीं सानू छड़ना चाहिदा ठीक है तुसी ब्रॉड माइंडेड होवो लेकिन किसे हद तक जेड़ा ना असि गोरे नहीं है गे असि एशियन आ ते एशियन ही रहना बेशक असि लबादा जितना मर्जी पहन लईए
0: ठीक है
1: क्योंकि बाई नेचर असि साडा जीन ही ओहो ही है नहीं समझे लिहाजा सानू जेड़िया साडी मेरा मतलब पर्दा या सिस्टम या कुछ लिमिट ओदा हामद अगर कहंदा है ते ओनू करन दा लै नहीं के ओ मसला है कि साडा मुआशरा ही इस किस्म दा कि नहीं एक्सेप्ट करदा नहीं पसंद करदा
0: नहीं पर भाजी आपां ठीक है थोड़ी गल बिलकुल तुसी आपदे थां ते सही हो बट आपां हुण किन्ना चेंज होए आ आपां अपना पहरावा बड़ा बदल लिया ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂ ਨੋ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਗਏ
1: ਮੂੰਹ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਰ ਲੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਰ ਲੋ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਿਟ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੇ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਓਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਦਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਖੈਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੇਫੀਡ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਦੀ ਇੱਡੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੇਫੀਡ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਾ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਨਵੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਚ ਕੇ ਮੂਵਰਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਐਚ ਕੇ ਮੂਵਰਸ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-524-6704 416-524-67